0: song.
1: This show is brought to you by Dettol.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: You got me going crazy.
5: Trending today. Sony Pictures revealed the first look from the upcoming Resident Evil film, helmed by visionary writer and director Zack Cregger, whose last film Weapons was a huge success. The film is set in the universe of the popular survival horror video game of the same name and is set to come out in September this year.
6: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
7: शराय तो जवाबित लागू है।
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
10: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
6: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनामात।
10: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
11: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
7: शराय तो जवाबित लागू है।
12: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
9: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
13: City FM 89, we're playing your song.
2: Wow. You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
14: Welcome back, everyone. Let's talk fictional travel destinations. If you could escape into any movie or TV world for a day, where are you going? Would it be the magic halls of Hogwarts, or somewhere completely different like the glowing world of Pandora? Or maybe you've got a wildcard pick. And here's the real question: what's the first thing you're doing when you get there? So WhatsApp us at 03-142-898-989 with your answer. I have three, because as usual, I can never decide on one.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Trading, trust me bro.
3: Nice game.
4: Committee.
2: Lad barai faro.
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैशबैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: शराइत जवाबित लागू हैं।

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
4: सिटी FM 89.
5: Attention, the standard commute has been decommissioned.
6: Introducing a system override for your ears.
5: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
6: your evenings just got an upgrade.
7: The rush hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
6: Tune in or get left behind.
3: City FM 89, we're playing your song.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: Hey, duni do do duni cha sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
4: अगर आप हैं इंड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
5: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: इन इंटेंस हीट citizens are advised to take special precautionary measures between 11 a.m. and 4 p.m. Avoid going outdoors unnecessarily. Wear light clothing. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K Electric, and Celani Welfare Trust.
7: Spread joy, spread love, spread laughter this Eid with City FM 89.
8: Eid Mubarak!
9: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
10: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
11: A new era begins.
12: We are
13: City FM 89.
0: You're listening to
14: Non-Stop Hits.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
5: लाड बराए फरो।
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
7: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: शराइत ज़वाबित लागू हैं।
9: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, क्योंकि AGS Tubular Battery अपने कमाल बैकअप से दिखाए अपना काम। AGS Tubular Battery दिल को है
10: आराम। City FM 89 wishes all its listeners Eid Mubarak.
11: Eid Mubarak.
12: Attention, the standard commute has been decommissioned.
13: Introducing a system override for your ears.
14: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
15: Join ABD as he takes over the streets.
14: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
13: your evenings just got an upgrade.
15: The rush hour with ABD.
12: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
13: Tune in or get left behind.
16: Sound of your city. City FM 89.
17: Have you saved our WhatsApp number yet?
18: 031-42-898989.
17: Get in touch over WhatsApp.
19: 89.
20: We're playing your song.
21: You're listening to
22: Non-Stop Hits.

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
1: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ। एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ, कभी भी कहीं भी। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका।
2: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
3: ये क्या है भाई?
4: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, क्योंकि

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m.
4: This time check was brought to you by Easy Paisa.
5: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
2: City FM 89.
6: This show is brought to you by Dettol.
7: You're listening to City FM 89.
6: This show is brought to you by Jazz.
8: City FM 89.
9: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
10: ये क्या है भाई?
9: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैज कैश।
9: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
11: पाँच सौ एम एल बनाए 20 और 800 एम एल बनाए 32 ग्लास।
12: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसी नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
13: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ। एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ, कभी भी कहीं भी। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट जीतने का मौका।
12: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
14: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात,
15: ये नेचुरल है
16: तो बेहतर है।
15: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामिशीरी।
12: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
17: Groove out to your favorite tunes and enjoy the festivities this Eid with City FM 89.
18: Eid Mubarak!
12: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: Follow us on Instagram at cityfm89
19: for your infinite scrolling wheel fix.
20: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
21: शराय तो जवाबित लागू है।
2: City FM 89 Sounds different.
22: Trading, trust me bro.
23: नई स्कीम,
24: कमिटी,
25: लाड बराए फरो।
24: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराय तो जवाबित लागू है।
6: सिटी एफएम 89।
26: क्लाइमेट चेंज आज पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुका है। शदीद गर्मी, बेवक्त बारिशें, सैलाब, खुश्कसाली और फजाई आलूदगी इंसानी जिंदगी और माहौल को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, इन मौसमी तब्दीलियों के असरात को शिद्दत से महसूस कर रहा है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद सूबे में बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम जैसे मंसूबों के जरिए जंगलात में इजाफा किया गया, जो माहौल के तहफ्फुज और कार्बन के इखराज को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साफ तवानाई, सोलराइजेशन और माहौल दोस्त इकदामात एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद हैं। आएं ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, पानी और बिजली का ज़िया कम करें और अपने माहौल को साफ रखें, क्योंकि आज का एक मुस्बत कदम कल आने वाली नस्लों के लिए महफूज और सरसब्ज मुस्तकबिल की जमानत बन सकता है।
27: ये पैगाम महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया।
6: City FM 89.
28: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers, It's time to get together and dance. Because this is Beat Camp.
0: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
1: City FM 89. We're playing your song.
3: You're listening to

0: CityFM.
1: This time check is brought to you by Jazz.
0: CityFM 89.
2: You got me going crazy.
1: This show is brought to you by Dettol.
3: We are
1: CityFM 89. This show is brought to you by Jazz.
0: CityFM 89. We're playing the song.
4: Trending today.
5: Sony Pictures revealed the first look from the upcoming Resident Evil film, helmed by visionary writer and director Zack Cregger, whose last film Weapons was a huge success. The film is set in the universe of the popular survival horror video game of the same name and is set to come out in September this year.
1: City FM 89.
6: Ek do teen yellow. Ek do teen yellow.
7: Ye kya hai bhai?
6: Ek jacket, shoes ho ya watch, jo chahe select karo. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
8: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
9: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
10: Mustanad Ulama-e-Karam aur State Bank of Pakistan ki zair-e-nigrani, Pakistan bhar mein Islamic banking ka waseeh network puri kare aapki banking ki tamam zaruriyat. Kyunki dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.
11: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inaamat dhai
12: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
13: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
14: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और एस

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance. And now, Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
2: Aayein, ehd karein ki hum sirf Islamic banking ka intikhab kareinge. Kyunki dil ke itminan ke saath, Islamic banking hai sab ke liye.
3: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
6: शराय तो जवाबित लागू है।
7: City FM 89.

0: May your holidays sparkle with joy and laughter. From all of us here at City FM 89, we wish you a joyful Eid.
1: Eid Mubarak!
2: This show is brought to you by Dettol.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
0: City FM 89.
4: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैज कैश.
4: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.
8: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसी नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात. क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
9: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास.
10: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance. Aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
8: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे. क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.

0: May your holidays sparkle with joy and laughter. From all of us here at City FM 89, we wish you a joyful Eid.
1: Eid Mubarak!
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM
5: 89.
6: Coming up next.
5: Dark Room. City
7: FM 89.
3: This show is brought to you by Dettol.
8: City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
8: City FM 89. We're playing the song.
9: Trending today.
10: Sony Pictures revealed the first look from the upcoming Resident Evil film, helmed by visionary writer and director Zack Cregger, whose last film Weapons was a huge success. The film is set in the universe of the popular survival horror video game of the same name and is set to come out in September this year.
8: City FM 89.
11: You got me going crazy!
12: 1, 2, 3, yellow. 1, 2, 3, yellow.
13: ये क्या है भाई?
12: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
14: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैज कैश।
12: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
15: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
16: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
17: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# हैश और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
18: अगर आप हैं इंड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
19: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
16: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए

0: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: binge on all of your favorite food, music, fashion, and lots more. Turn up the volume on all the festivities this Eid. Only with City FM 89.
1: Eid Mubarak!
2: It's 7:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89.
6: This show is brought to you by Dettol.
7: City FM 89.
6: This show is brought to you by Jazz.
8: City FM 89.
9: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
10: Ye kya hai, bhai?
9: Ek, jacket, shoes ho ya watch. Jo chahe select karo. Do, Jazz Cash par yellow se payment karo. Aur teen, yellow se apni payment ko 3 installments mein break karo. तो क्या समझी?
11: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जैस कैश.
9: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो.
12: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
13: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
14: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sab ki superpower.
13: Aaye ehd karein ki hum sirf Islamic banking ka intikhab karenge, kyunki dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.

0: Eid Mubarak and warm wishes from everyone here at City FM 89.
1: This show is brought to you by Dettol.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
5: Ye kya hai, bhai?
4: Ek, jacket, shoes ho ya watch. Jo chahe select karo. Do, Jazz Cash par yellow se payment karo. Aur teen, yellow se apni payment ko 3 installments mein break karo. तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जैस कैश.
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो.
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
8: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात. क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
9: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance. Aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahein full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sab ki superpower.
8: Aayein, ehd karein ki hum sirf Islamic banking ka intikhab kareinge. Kyunki dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.

0: पाकिस्तान।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी। आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
8: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात,
9: ये नेचुरल है,
10: तो बेहतर है।
9: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, कर्शी जामिशीरी।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
11: ईद मुबारक फ्रॉम सिटी FM 89।
12: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
13: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
14: A new era begins.
15: City FM 89, your drive along companion.
16: You're listening to
17: Dark Room with Tapu Javeri.
18: City FM 89, the Dark Room. Up next, we have Andrea True Connection, who sang this song More, More, More, which was super famous, but nobody knew what she really was. She was an adult film star who decided to become a musician, and hence they banned her music, even though I guess it played in clubs all over the place. So Andrea True Connection, More, More, More.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
2: It's time to get festive and share the joy this Eid with everyone around you. City FM 89 wishes you a blessed Eid.
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
4: A new era begins.
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 installments में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: City FM 89
8: on the dial. You're listening to
4: Future Sounds.
8: Future Songs.
9: Vibe with us, your music.
10: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: It's time to get festive and share the joy this Eid with everyone around you. City FM 89 wishes you a blessed Eid.
1: It's 9:30 PM.
2: This time check was brought to you by Easy Paisa.
3: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
4: You're listening to City FM 89.
5: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
6: शराय तो जवाबित लागू है।

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: Groove out to your favorite tunes and enjoy the festivities this Eid with City FM 89.
5: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 installments में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
8: Attention, the standard commute has been decommissioned.
9: Introducing a system override for your ears.
8: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
9: your evenings just got an upgrade.
10: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
11: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
12: Future Sounds.
13: Future Sounds.
9: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: Mubarak and warm wishes from everyone here at City FM 89.
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराइत ज़वाबित लागू हैं।
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 installments में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।

0: along to your favorite tunes this Eid with City FM 89.
1: It's 11 PM.
2: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89, we're playing your song.
3: Trending today.
4: Sony Pictures revealed the first look from the upcoming Resident Evil film, helmed by visionary writer and director Zack Cregger, whose last film Weapons was a huge success. The film is set in the universe of the popular survival horror video game of the same name and is set to come out in September this year.
1: City FM 89.
5: You got me going crazy!
6: 500 ml banai 20 aur 800 ml banai 32 glass.
7: Trading, trust me, bro.
8: Nice scheme.
9: Committee.
7: Lad banaye faro.
9: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो.
10: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैशबैक जीतने का मौका पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक. शराइत ज़वाबित लागू है.
11: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, क्योंकि AGS Tubular Battery अपने कमाल बैकअप से दिखाए अपना काम. AGS Tubular Battery.
12: दिल को है आराम.
13: You're listening to City FM 89.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: City FM 89.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
5: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
3: City FM 89. Sounds different.
7: You're listening to
8: Nonstop Hits.